0: होर्मुज़ल्लम्रु मध्येत्यनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारम्भात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिकवायु आपूर्तौ आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्तीकृताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्य 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण सम्बद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशाः अपि प्रदत्ताः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्त संचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिला वर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चेस क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्याम स्पर्धायाम् इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरु मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्येन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायाम् उक्तं यत् 26,000-तम वर्षस्य प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिकवायोः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिकवायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज़ जलडमरु मध्यात् द्रवीय प्राकृतिकवायोः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरम् आवश्यकवस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियमः सफलतया प्रभावशीलः अभवत्। मन्त्रिणा अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटिरूप्यकाधिक धनं च प्रदत्तम्। श्रीचौहानेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च ग्रामीणविकासमन्त्रिभिः साकं वीबीजी रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षा अपि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांशधनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्तनिधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानाम् अभ्यन्तरे एव प्रदातुं शक्येत।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बाल यौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतोभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशां सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः 7 दिनानाम् अभ्यन्तरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनक सामग्र्यः बालयौन शोषण सामग्र्यः वितरणं प्रसारणं च कश्चन दण्डनीय अपराधो वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भवति।

हिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरी मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज

0: शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
0: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
0: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
0: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे, और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: फिर वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
0: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
0: साहब जी आप सब कुछ भूल गया साहब, वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ। मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। हाँ? तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ गेट आउट।
0: साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यही हो
0: साहब?
1: क्या है
0: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
0: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
0: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
0: तो वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे?
1: तो उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
0: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो, उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
0: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मेम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात को जरा थोड़ा गौर करो साहब।
2: बहादुर! अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
1: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है?
1: अरे रीटा तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला शाब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी, इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ, और 10 बजे से पहले ही रफू चलना।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता।
3: क्या?
1: किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस। ओके खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
1: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है। बहादुर, बहादुर
4: आया साहब, आया साहब।
0: ओ मेम साहब आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
0: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
0: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
0: नहीं नहीं मेम साहब।

0: अब ऐसे कैसे हो सकता है? तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब। आइए आइए तशरीफ लाइए।
1: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
0: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
1: नहीं साहब,
0: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
1: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
0: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
1: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पर बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
2: सलाम साहब।
0: सलाम।
2: सलाम मैम साहब।
3: सलाम।
2: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
0: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
1: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
2: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
1: होटल में साहब?
2: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
0: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
4: मैं अभी लाता हूँ साहब।
2: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
0: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
1: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
0: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
2: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माए बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
2: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
1: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
2: चलो आप शाप से शाप शाप बात कर लो।
0: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
1: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
2: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
2: ना, ना, ना,
0: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
1: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
1: क्या मामा मतलब साहब?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
1: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब, कोई नुकश नहीं, हाँ घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है साहब, एक घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
1: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
1: तुम्हारी बात का साहब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
1: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के, बात ये कि
2: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ साफ बात कर दो।
1: चल तू ही बोल दे साफ साफ।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
1: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
0: मुझको?
1: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
2: साहब, आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
1: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
1: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
2: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो, शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
1: ठीक कहती है रे तू, बिल्कुल ठीक कहती है,

0: अच्छा साहब, माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
1: क्या बात है साहब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
2: बहादुर, तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
3: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
0: बात ये मेम साहब कि मेरा
4: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम ही बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
3: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा, तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
3: ये भी ठीक।
2: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
3: कभी नहीं हो सकता।
2: क्या नहीं हो सकता?
3: ये है कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
2: ये कोई जबरदस्ती है?
0: चलो लक्ष्मी, सलाम मेम साहब। सलाम साहब।
2: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
0: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
3: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
0: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
3: सलाम
0: साहब।
3: सलाम
0: मैम साहब।
2: बहादुर, इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
1: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
3: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
2: Good idea. मैं बस गया और आया।
1: मेम साहब जी, साहब किधर गया?
3: अंदर कमरे में तैयार होने।
1: अच्छा,
3: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
1: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
3: अरे ठीक नहीं, हिट था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
1: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुलुक से बुलाया इनको।
3: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
1: ओ नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
3: हाँ,
1: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
5: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
1: थैंक यू मेम साहब, थैंक।

बहादुर की शादी, हरि मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टमैलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।

0: अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।
1: Yeah.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है।

0: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है।

0: जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
2: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों

0: ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: के बाजार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर। कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलोजान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: वही हूँ।
1: जब जब फूल खिले आनंद बख्शी कल्याण जी आनंद जी।
0: रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा।
1: दो बदन शकील बदायूनी रवि।
0: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
1: हमराही हसर जयपुरी शंकर जयकिशन।
0: हुई शाम का ख्याल आ गया।
1: मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह,
1: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया।
1: जी
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है, तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही
1: और
0: बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे
0: जी,
1: कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई।

0: थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप, राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं

लेके बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती। जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: तुम क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है,
0: जी
1: तस्वीर
0: हाँ
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की
1: इसीलिए
0: है।
1: फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा। शायद सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी,
0: जी
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया, बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे, और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
0: जी
1: फिल्म के
0: जी
1: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था।
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालय फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का

0: जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है।
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपनी।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपने जाने कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
1: जयंत जी,
2: जी
1: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
2: अच्छा।
1: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
3: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो। कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो वो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो ऐसे करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
4: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
3: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये

0: जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल
1: जी
0: की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
1: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में,
0: जी,
1: ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
1: जी
0: बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे,
1: जी हाँ
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा। बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप। सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना

0: देना नहीं,
1: जी
0: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था,
1: जी
0: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा। जो आमतौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं, उस
1: जी
0: तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है,
1: जी
0: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा
1: कामयाब होंगे।
0: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके। हाँ,
1: अच्छा
0: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं। तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है।
1: मुंबई चले आना है,
0: हाँ,
1: फिर मुंबई
0: बॉम्बे
1: चले।
0: आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा, और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे। कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ, यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
1: किसने कहा था?
0: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया
1: अच्छा
0: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग, और फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन।
1: अच्छा
0: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और
1: जिक्र करते
0: जाकर, हाँ, कि
1: होंगे।
0: अरे फला एक नया लड़का है, उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचम दा के यहाँ, कल्याण जी
1: जी
0: भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया,
0: नहीं,
1: तो कैसे मिला था ये
0: इसका तो
1: मौका?
0: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, कि मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और आगे भी रहूंगा।
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
1: जी जी
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है, और इसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है,
1: अच्छा
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन। तो ये मेरी, देखिए, खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी, क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं
1: जी
0: ना, प्रिट नेम है, बट
1: अच्छा
0: मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत
1: बहुत
0: याद
1: याद
0: आया, मैं
1: आया।
0: इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो, मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग,
1: जी
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन, जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं, क्योंकि
1: जी
0: रोज का काम है
1: जी
0: उनका,
1: जी
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एकदम सन्नाटा छा गया वो।

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता था जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व. गाना जब बनता था ना, जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी. कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया हो, अच्छा
1: नहीं,
0: लगा?
1: अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या.
0: जी.
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को,
0: जी
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे. बहुत सारी बातें मिला के अमिताभ बच्चन है.
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए,
0: जी
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया.
0: जी जी
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा
0: बात
1: हो गया.
0: है.
1: जी बिल्कुल.
0: अच्छा, मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था,
0: जी.
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था. ये बात है 1976 की.
0: अच्छा.
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने
0: जी
1: किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था. और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाई हैं ये सब,
0: जी जी
1: बिहार का सिचुएशन देख कर.
0: जी
1: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा. ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला. देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया, तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो.
0: अच्छा.
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर. और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदना एक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया. नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था. फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले, रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले.

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे, एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं, एल्बम 60-70 हैं कव्वालियों के,
0: जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी हाँ
1: संजय खान साहब
0: हाँ
1: की,
0: हाँ हाँ
1: उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है, वो
0: अच्छा
1: सारे हनुमान चालीसा, सारा टाइटल भी आपने सुना होगा,
0: हाँ
1: मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है
0: जी
1: ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल, पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे, वो सब मैंने गाया।
0: जी
1: मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए, कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं,
0: जी
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो इसमें चार सिंगर हैं। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था।
0: जी
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2,500 है, और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने,
0: जी जी
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे,
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा। खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे
1: आएंगे।
0: विविधा

0: अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में, और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपके मित्र मनीषा जैन,
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।